अभी एलिजाबेथ बी था एलिजाबेथ बे थाई कलोरी ती है ना कि कुमारी एलिजाबेथ मुझे को तो मकिरंगो डामिन गुंटिंग कब सरंगान तो तुम डीजे का कब सरंगान ना कि कुमारी आता बनाए डामिन अभी नूरिया मदिसिन मुझे को ना कि अभी पीटर मेलबोर्न कब सरंगान डीजे तो सो कहो हाओ हाय हाय कुमारी का यूना मेलबोर्न कब सरंगान ना कि angatan ga tambalut makirong dot tina makirong tika selimbahan berus tusun